रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि। तदनुसार 17 मई 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा हमारे कार्यक्रम सुप्रभात का, और सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम, जिसमें कि आज आप सुनेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष कार्यक्रम, और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जो कि लेटेस्ट सिटी हैपनिंग्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बेस रहेगा। 9 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम। 11 बजे का समय रहेगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का, जिसमें कि आप सुनेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। 12 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 12:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक। 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का। 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें कि आज आप सुनेंगे स्पेशल कार्यक्रम ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर। 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 4:05 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव टाइल प्रोग्राम।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
2: FM ट्रैक बैंड

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला

0: इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक

0: साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ

0: संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूरसंचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेमी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा।

बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। जेट की दोपहरी है दोस्तों, 1:05 बाद स्टूडियो क्लॉक और ये वो समय है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं लेकर आप ही के लिए आप ही का शो मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं और मुझ तक पहुंचना बहुत ही आसान।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आप ही की पसंद के ट्रैक एकदम लाइव। इस समय शो पर मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सगा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। आप सभी को पहली पनाह नमस्कार जी, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए जो मेरे पास पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नामची सिक्किम से हमें आनंद जी ने मैसेज लिखा है, साथ ही साथ मानिका ने कि इन्हें सुनना है फिल्म कोई आपसा का ट्रैक। तो चलिए हम जरूर कोशिश करेंगे, दिस इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे, तो हम इस ट्रैक को जरूर बजाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मैसेज हमारे पास पहुंचा है इसे भी हम शामिल करते हैं। इस्लाम सलमानी साहब है बदायूं से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है पुणे से, जीविका है, ऋषिकेश है, अनिकेत है, सविता और अशोक है, कुमार गली श्रीरामपुर से इन्होंने हमको मैसेज लिया है। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से हमारे पास प्रार्थी जयप्रकाश जी हैं, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस ट्रैक जयप्रकाश जी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं इसे अगर बजा सका तो। इसके साथ साथ रेशमा जी हैं अलीगढ़ से, सुनीता हमारे साथ शालीमार बाग से जुड़ी हैं, और अमरबीर सिंह साहब हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं और ये सुनना चाहते हैं आशिक की फिल्म का ट्रैक। आशिक नहीं है, आशिक ही है अमरबीर जी। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इस ट्रैक को बजाने की अगर मेरे पास सिमिलर रिक्वेस्ट आती है। और भी बहुत सारे लिसनर्स थे, लेकिन अगर आपकी और कोई चॉइस हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास आया है इला और सौरभ का, और ये सुनना चाहते हैं काश के हम कभी हाँ कभी ना का ट्रैक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक आई शुड से दोस्तों। और ये सोनीपत से हमारे पास मैसेज है विजय शंकर साहब का, और ये भी ट्रैक सुनना चाहते हैं कुमार सानू साहब की आवाज़ में। तो चलिए बहरहाल ये बेहतरीन ट्रैक आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, और अगर आप भी अपनी पसंद का कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझ तक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं एकदम लाइव। इस समय कंप्यूटर के स्क्रीन पर टकटकी लगाए आपके मैसेजेस को मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हें निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, और नए मैसेजेस का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। 9868107070 मेरा नंबर है दोस्तों, एकदम लाइव इस समय आपके साथ हूँ। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया है तो वंस अगेन, रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आज गोपाल। दोस्तों, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:18, यानी कि आपकी हमारी भाषा में जेठ की दोपहर के 1:15 हो चुका है। संडे का दिन है दोस्तों, और हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद के ट्रैक्स। बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास पहुँच रही हैं, और मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में आशिकी 1 का ये ट्रैक। मैंने लोगों से पूछा कि भाई अगर कोई और भी इस ट्रैक को सुनना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे पास अब जो इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं। आई वेट फॉर सम मोर टाइम, इफ़ आई रियली गेट कंसिडरेबल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू तो मैं ज़रूर इस ट्रैक को यहाँ पर प्ले करूँगा। और आपको मैं दे रहा हूँ लगभग 60 सेकेंड्स। जी हाँ, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर मैं जाऊँगा और इस ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, और इफ़ आई रियली गेट मोर रिक्वेस्ट फॉर दिस सॉन्ग आई सर्टनली प्ले दिस, सो डोंट गो, स्टे विद अस, आई बैक इन अ शॉर्ट वाइल आफ्टर दिस ब्यूटीफुल कमर्शियल ब्रेक।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कम बैक 1:20 बाद स्टूडियो क्लॉक और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी पसंद के गीत की। आप ही के शो पर

मेरे लिए मुश्किल आया था उसको पढ़ना, सो प्लीज बी विद मी एट टाइम्स, मैं दुनिया भुला दूंगा ये ट्रैक जो है। इसकी एक और रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है, दोस्ती का रिश्ता पुराना है कह रही हैं डोली, और इन्हें ये गाना पसंद आया जो अभी हमने बजाया था। वी आर लिसनिंग योर ट्रैक्स, कह रहे हैं हमें अंबर बीर सिंह जी गुरुग्राम से, और मैं दुनिया भुला दूंगा सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ ये मैसेज हमारे पास भजन लाल जी का आया है और ये भी सुनना चाहते हैं, आशिकी फिल्म का ट्रैक, एनिवर्सरी है आज भाई, और संजू यादव जी इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं, तो मगर साथ देने का वादा करो, तो ज़रूर कोशिश करेंगे संजू भाई, लेकिन आपको साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी एनिवर्सरी की। मैं सॉन्ग चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई नीड टू सी कि कितने सारे मैसेजेस हमारे पास पहुँचते हैं सिमिलर ट्रैक्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है हम उन रिक्वेस्ट को यहाँ पर एंटरटेन कर सके, वही हमारी कोशिश भी होती है। खुशी हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ी है, ना कजरे की धार जो ट्रैक है वो सुनना चाहती है। कोई आपसा ट्रैक हमने बजाया अमानिका के लिए सिक्किम से, इन्होंने हमें थैंक यू बोला है, तो बिल्कुल जी थैंक यू आपको भी हमें मैसेज भेजने के लिए। इसके साथ साथ सिर्फ तुम का गाना सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, सुनीता नेगी 16 इन्होंने हिमाचल से हमें मैसेज लिखा है। इसके साथ साथ सुनीता लोकेश ने अहमदाबाद से हमें मैसेज लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज। और हरकिरण सिंह जी हैं फरुखाबाद से, इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, और ये पहला मैसेज कहते हैं कि इन्होंने लिखा है, और ये है हमारे पास अनिल कुमार साहब का गुरुग्राम से, थैंक यू सो मच हमें मैसेज भेजने के लिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पसंद के ट्रैक्स बजा सकूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मैं दुनिया भुला दूंगा आशिकी फिल्म के इस ट्रैक को अपना थम्स अप दिया। निकल चुका है आप सभी के लिए कुमार सानू साहब की आवाज़ में, तो वो सभी लोग जो कुमार सानू साहब की आवाज़ में भी ट्रैक सुनना चाहते थे उन सब की रिक्वेस्ट भी यहाँ पर पूरी हो रही है। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

102.16 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे साथ मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप भी की पसंद के ट्रैक्स को बजाते हैं। 9868107070 नंबर है दोस्तों, जिसके द्वारा आपके दिल की बात पहुंचती है मेरे दिल तक और मेरे दिल से उन सब के दिल तक जो दिल से सुनते हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 1:30, यानी कि आपकी हमारी भाषा में संडे दोपहर के 1:30 बज चुके हैं दोस्तों। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं, रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है राज फिल्म के ट्रैक को सुनने की। अनुजा शर्मा मेरठ से हैं, इन्होंने ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, तो हम जरूर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम

ट्रैक को बजाए। गुड्डू जी हैं हमारे साथ उज्जैन से, ये भी जुड़े और ट्रैक सुनना चाहते हैं। अमन और दीपांशु हैं, सचिन और जयराम जी हैं उत्तम नगर से, ये भी सुनना चाहते हैं ट्रैक। मनप्रीत हमारे साथ जुड़ी और नोएडा से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे आशिकी की, जो ट्रैक हम ऑलरेडी यहाँ पर प्ले कर चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हमें अलग अलग सॉन्ग की यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मनीषा है, राम बाबू हैं, ये राम जाने का टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं। कविता है उत्तराखंड से और कह रही है कहूँ ना कहो ये आँखें बोलती हैं, सुनना चाहती हैं। मर्डर फिल्म का ट्रैक, नदिया के पार का कोई ट्रैक सुनाइए। मीत नगर से लाल जी हमारे साथ जुड़े। इसके साथ साथ राजेश भल्ला जी कह रहे हैं DDL जी का कोई गाना सुनाइए ना, हिना मूवी का ट्रैक सुनना चाहते हैं। सुनीता अहमदाबाद से, बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास हिना जो मूवी है उसके लिए भी आ रही है। कोई आपसा जो अभी हमने ट्रैक बजाया उसके लिए हमें थैंक्स कर रहे हैं हरकिरण सिंह जी। इसके साथ साथ DRJ आई एम विद यू रणबीर जी हैं, और साथ ही साथ रघुवीर सिंह जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं और ये भी हिना फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं। वेरी सरप्राइजिंगली मेरे पास हिना फिल्म के ट्रैक की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट पहुंच रही हैं दोस्तों। हिना फिल्म की एक और रिक्वेस्ट हमारे पास मथुरा से आई है वीरेंद्र जी की, और हिना का एक और ट्रैक सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है अंबीर साहब का, आई एम नॉट श्योर कि ये सब लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया लेट्स हैव अ कंटिन्यूस रिक्वेस्ट फॉर दिस ट्रैक, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरे पास दो सॉन्ग्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट है दोस्तों। एक है जो सुनना चाहते हैं फिल्म राज से, और वो मैं बजाने वाला हूँ अलका याग्निक, तुम अगर सामने आ भी जाओ। इसके साथ साथ हिना फिल्म का अगर आप ट्रैक सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। तो आई एम हैविंग टू ऑप्शंस, आई एम गिविंग दोज टू ऑप्शंस टू यू, और उनमें से एक गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगा। या तो राज फिल्म का ट्रैक होगा या फिर हिना फिल्म का। कौन से फिल्म का ट्रैक आप सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं फिलहाल जा रहा हूँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। जब हम बोलते हैं ना छोटे से कमर्शियल ब्रेक, आई मीन इट, सिर्फ 90 सेकेंड में वापस लौटूंगा। कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं वापस पहुंच चुका हूं आपके पास लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग दोस्तों। और बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच रही हैं। हिना और राज के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर। शालू में शादीपुर से कह रही है राज का गाना बजाइए और हिना जो ट्रैक है उसे सुनना चाहते हैं। चेतन भाई गया बिहार से।

सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का ट्रैक। तो चलिए यहाँ पर हिना ने बाजी मार लिया, लेकिन अगर फिर भी आप राज फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं तो भी मुझे मैसेज करके जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है अगला वाला गाना राज फिल्म का ही हो। बहरहाल हिना फिल्म का ये ट्रैक लता दी की आवाज में आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 9868107070 मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, अगले 25 मिनट आपके पास रहेगा, एकदम लाइव स्टूडियो में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप कोई भी गाना अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक कभी भी रेडियो पर ट्राई नहीं किया तो आज करके देखिए। रेडियो का रोमियो करता है वादा, जितना सोचोगे मुझको उससे पाओगे ज़्यादा।

ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो और आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर हम आप ही की पसंद के ट्रैक्स बजाते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर सकें।

प्लीज प्ले राज मूवी का सॉन्ग, ये है अनुजा मेरठ से और भी बहुत सारे लोग हमें लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए आई विल गिव यू अ मिनट एब्सोल्युटली 60 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और बहुत ही छोटा सा ब्रेक लूंगा और उसके उस पार मैं बजाऊंगा वो वाला गाना जो आप सुनना चाहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँचेगी। 9868107070 नंबर है मेरा व्हाट्सएप जो मुझ तक पहुंचेगा, एकदम लाइव इस समय स्टूडियो में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ और खूबसूरत गीत सुनाएं। लगभग 20 मिनट का समय मेरे पास अभी और बाकी है, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप डिसाइड करेंगे कि आप एनिमल फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं, सतरंगा या फिर राज फिल्म का, मुझे ज़रूर बताइएगा।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: 102.6

हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए अलका याग्निक की आवाज में रास फिल्म का ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कोई और ट्रैक अगर आप हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों, इस घड़ी वक्त हुआ है 1:51। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, रेडियो का किशन का नया आजे गोपाल। और अब मेरे पास एक और ट्रैक बजाने का समय बचा हुआ है, और अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ट्रैक तो 9868107070 पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि मैंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि मैं अरिजीत सिंह साहब का ट्रैक बजाऊंगा, जो कि लास्ट ट्रैक होगा। और अगर आप अरिजीत सिंह साहब का कोई खास गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भेजिए। कुछ समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक पर। जब मैं बोलता हूँ ना छोटा सा ब्रेक, सो आई मीन इट एब्सोल्युटली। ठीक 2 मिनट में वापस लौटूंगा, बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट पहुंचने लगी और ज़्यादातर रिक्वेस्ट इस तरह से मेरे पास पहुंची कि भैया कोई भी गाना बजा दीजिए, क्योंकि जब बात अरिजीत सिंह साहब की हो तो हर गाना सुपर हिट है। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है नूरबी खान जी का, ये मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और चंडीगढ़ से मैसेज

और सुनील है, इन्होंने मैसेज हमें भेजा है नागालैंड बॉर्डर से, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, थैंक यू सो मच हमें ये मैसेज भेजने के लिए मेरे दोस्त, बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि हम आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला सके, आपकी पसंद के गीत आपको सुना सके, और ये जो सिलसिला है 102.6 FM पर जारी रहेगा। अगले वाले शो का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर गद्दी छोड़नी होगी। आज के लिए आपसे अनुमति लूंगा, लेकिन रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए यूं ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। छोड़े जा रहा हूं अरिजीत सिंह साहब की आवाज में स्ट्राइक के साथ, आपको शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूँ ज्योतिका आपके साथ, लेकर आई हूँ आपका अपना शो आशियाना। हर घर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपनी वॉर्म्थ, अपनी कहानियाँ, लेकिन एक चीज जो हर घर को और भी ज्यादा अलाइव बना देती है वो क्या होता है? वो होते हैं घर के छोटे उस्ताद। कभी डांस करते हुए पूरे ड्राइंग रूम को स्टेज बना देते हैं, कभी मोबाइल की सेटिंग्स हमसे बेटर समझा देते हैं, और कभी इतनी इनोसेंट लेकिन सेंसिबल बातें बोल देते हैं कि हम बड़े लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। आज के बच्चे कॉन्फिडेंस में भी आगे हैं, क्रिएटिविटी में भी और इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी, और शायद इसीलिए हर फैमिली में एक ऐसा लिटिल स्टार जरूर होता है जो पूरे घर की एनर्जी चेंज कर देता है। तो आज के आशियाना में हम बात करेंगे उन्हीं क्यूट, टैलेंटेड और स्मार्ट छोटे उस्तादों की, जो घर को सिर्फ घर नहीं एक हैप्पी स्पेस बना देते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी राइट हियर।
2: चकरका ची चाय चो चकलो रम गंडो वंडो लकरका टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाय विडी पाय चिकी चका चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरका हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला कभी को चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चका चो।

अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बम बम बोले इस गाने पे कभी आपने अपने घर के बच्चों के साथ थोड़े से ठुमके लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वेरी गुड, क्योंकि बहुत मजा आता है। और अगर नहीं लगाए हैं तो लेट मी टेल यू, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल, है ना? वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका, और आज हम बात करेंगे अपने घर के छोटे उस्तादों के बारे में। सच कहूं तो आज के जो बच्चे हैं ना, काफी स्मार्ट जनरेशन है। हम लोग जब उनकी उम्र के थे तो टीवी का चैनल चेंज करना ही बहुत बड़ा काम लगता था, और आज के किड्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते करते फिल्टर्स यूज करना भी सीख जाते हैं। कभी कभी तो जेन्युइनली लगता है कि टेक्नोलॉजी के मैटर में पेरेंट्स से ज्यादा अपडेटेड तो बच्चे हैं। पापा थोड़ी ब्राइटनेस तो बढ़ा लो, या फिर मम्मा एप्लीकेशन अपडेट कर लो, या बटन दबा देना तो ये काम हो जाएगा। घर में मिनी टेक एक्सपर्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं है, आज के बच्चे इमोशनली भी काफी एक्सप्रेसिव हैं। अगर घर में कोई अपसेट हो तो सबसे पहले आकर झप्पी भी वही करते हैं, और ऑनेस्टली उनकी एक छोटी सी बात कभी कभी पूरा मूड बेटर कर देती है ना? बच्चे होते इतने अच्छे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.care.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

समाधान सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे घरों की, हमारे जो होम स्वीट होम होता है उसमें छुपे हुए शाइन करते हुए छोटे उस्ताद। जी हाँ, हर घर में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो फुल एंटरटेनमेंट का पैकेट होता है। गेस्ट आए और परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, कभी डांस, कभी मिमिक्री, कभी रैंडम इंग्लिश का वो जो एक्सेंट होता है, और कॉन्फिडेंस इतना कि बिल्कुल स्टेज का जैसे डर ही ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, एनी गेसेस? फैमिली भी उनकी परमानेंट ऑडियंस होती है। मम्मी वीडियो बना रही होती हैं, पापा तालियां बजा रहे होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स प्राउडली सबको कहते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है। ये छोटी छोटी फैमिली मोमेंट्स ही एक्चुअल घर की रियल हैप्पीनेस होती है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी नेचुरली इतनी पॉजिटिव होती है कि पूरा एटमॉस्फेयर लाइट और चीयरफुल हो जाता है ना? बच्चे ना हर घर की जान होते हैं। छोटे उस्ताद, हैट्स ऑफ।

बच्चे ना वैसे आपकी खुशी भी होते हैं, आपकी दुनिया भी होते हैं, आपका सारा जहान होते हैं, क्योंकि वो आपके घर की जान होते हैं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। वैसे एक चीज और बहुत ब्यूटीफुल होती है, सोचो क्या, आजकल के जो बच्चे हैं ना इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं। हम बड़े लोग कई बार फीलिंग्स छुपा लेते हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे बिना हेजिटेशन के बोल देते हैं, आई लव यू मम्मा, या पापा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। या आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे आपके साथ आके बैठे हो और पूछा हो, आप आज बहुत थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है? कभी कभी उनकी इनोसेंस में ही इतनी मैच्योरिटी होती है कि दिल को छू जाता है सब कुछ। और घर में अगर छोटे बच्चे ना हो तो घर खाली खाली सा लगता है ना? ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब बच्चों का प्यार आपको मिलता है और आप अपना प्यार बच्चों को देते हैं। हर फेस्टिवल, हर डिनर, हर आउटिंग और भी स्पेशल लगने लगती है, क्योंकि बच्चे हमारे घर की खुशी, हमारे दिल की खुशी होते हैं।

आपको स्कूल के एनुअल फंक्शंस याद है? एनुअल फंक्शंस की वो एक्साइटमेंट याद है? एक दो मिनट की परफॉर्मेंस के लिए पूरा घर प्रेपरेशन मोड में आ जाता था। कॉस्ट्यूम्स लाने हैं, कॉस्ट्यूम क्या पहनना है उसका डिस्कशन, डायलॉग्स याद करने हैं, और उसके बाद क्या, पेरेंट्स की जो एक्साइटमेंट होती थी वो बच्चों

से भी ज्यादा होती थी। और फिर जब स्टेज पर अपना बच्चा परफॉर्म करता था, चाहे लाइन भूल जाए, लेकिन फैमिली के लिए वही असली सुपरस्टार होता था। शायद इसीलिए बचपन की परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटिशन्स की मेमोरीज हम कभी भी नहीं भूल पाते। आई एम श्योर अगर आप भी आंखें बंद करेंगे ना, तो आपको वो गाना, वो कुछ स्टेप्स जो आपकी मैम ने आपको सिखाए थे, वो आज भी आपको याद होंगे, आपके दिल के करीब होंगे। जब आप स्टेज पर बस अपनी गर्दन उठाकर अपने मम्मी पापा को स्पॉट करना चाहते थे कि कहाँ बैठे हैं वो, और बस एक बार आई कांटेक्ट जब हो जाता था, तो बस आपके चेहरे की खुशी मैच कर लेते थे वो। इन सब में उनका प्यार, वो पूरे घर का वो जो टैलेंट, पूरा घर जो साथ में शामिल होता था, क्या प्यार होता था, उसी को तो आशियाना कहते हैं।

माँ को सच्ची में सब कुछ पता होता है, आप कहें या ना कहें वो आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपकी रग रग से वाकिफ है वो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना, मैं हूँ ज्योतिका और हम आज बात कर रहे हैं हमारे घर के छोटे उस्तादों के बारे में। आज के बच्चे मल्टीटास्किंग में भी कमाल हैं। एनी डाउट्स? वेल, आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि देखो मॉर्निंग स्कूल हो, इवनिंग हॉबीज होती हैं, फिर होमवर्क भी करना पड़ता है, फिर कभी कभार कोई रील्स भी बना रहा होता है, एनर्जी लेवल ऑनेस्टली इंस्पायरिंग होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम उन्हें सिर्फ कॉम्पिटिशन और प्रेशर की तरफ पुश ना करें। हर बच्चे का अपना पेस होता है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, और कोई सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से घर को हैप्पी बना देता है। इसीलिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। कभी कभी एक सिंपल सा वेल डन इतना भी कह देंगे ना हम बच्चों को, उनके लिए ना दिन बन जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो आप अगर अपने घर के बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें तो ही अच्छा होगा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना। और आज हम बात कर रहे हैं छोटे उस्तादों की। जी हाँ, हमारे घर के चिराग, हमारे घर की खुशी, छोटे उस्ताद। घर में जब छोटे बच्चे नहीं होते ना, तो घर कितना चुपचाप साइलेंस सा नहीं लगता। और जैसे ही घर में बच्चे होते हैं तो साइलेंस होता है कम और लाइफ होती है डबल। कभी कुशंस का वो फोर्ट बनाना, कभी रैंडम फैशन शो चल रहा होता है, कभी पूरा घर क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है। और उस वक्त शायद हम इरिटेट भी होते हैं, लेकिन बाद में यही मोमेंट्स सबसे प्रेशियस मेमोरीज बन जाते हैं। उनकी नॉटी बातें, रैंडम क्वेश्चंस और नॉन स्टॉप टॉकिंग ही घर को ट्रूली अलाइव रखती है ना।

जब गानों पर हमारे घर में बच्चे ठुमके मारते हैं तो मजा ही आ जाता है। वैसे अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो बच्चे सिर्फ सीखते नहीं, सिखाते भी बहुत कुछ है। क्विकली फॉरगिव करना, छोटी बातों में खुश हो जाना, ओपनली लाफ करना, और ये क्वालिटीज हम बड़ों में कहाँ होती है बताओ। छोटी छोटी बातों पे तो हम बुरा मान जाते हैं, और फिर घर के जो छोटे उस्ताद हमें याद दिलाते हैं कि हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। कभी आइसक्रीम मिल जाए तो खुशी, कभी आउटिंग हो जाए तो एक्साइटमेंट, और कभी बस फैमिली एक साथ बैठ जाए, आहा, तो परफेक्ट डे बन जाता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आशियाना विद मी ज्योतिका। और आपसे एक बहुत बात कहना चाहूँगी मैं, अगर आपके घर में भी कोई छोटे उस्ताद हैं तो उनकी छोटी छोटी मेमोरीज को चेरिश ज़रूर करिएगा। उनकी फ़नी वीडियो सेव करिए, उनकी क्यूट बातें याद रखिए, क्योंकि बचपन ऑनेस्टली बहुत जल्दी निकल जाता है। आज जो टॉयज़ स्कैटर्ड लगते हैं, गुस्सा आता है, जो शोर शराबा होता है, इरिटेशन तो होती है, लेकिन वही चीज़ें बाद में घर की सबसे इमोशनल याद बन जाती है। और शायद इसलिए घर का असली हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस का हमारा ये जो मीटर होता है, बच्चों की लाफ्टर से ही होता है।

माँ जब डांटती है तो बुरा तो लगता है, लेकिन माँ से ज्यादा प्यार भी हमें कौन करता है। दोस्तों, इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ आज के आशियाना में बस इतना ही। आज हमने बात की घर के उन प्यारे छोटे उस्तादों की, जो कभी अपनी टैलेंट से, कभी अपने इनोसेंस से, और कभी अपनी क्यूट नॉटी बातों से पूरे घर को हैप्पी बना देते हैं। उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि बचपन की ये जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, लाइफ की सबसे वार्म मेमोरीज बन जाती हैं। मैं हूं ज्योतिका, और अब आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस, और अपने घर के छोटे उस्तादों को मेरी तरफ से एक बड़ी वाली झप्पी।

तेरे मेहरबानिया फ्लिमोट शबीर कुमार और अनुराधा पोचवाल लगा वास्ते हुनिले हुनी रगा सब बिल्लक ए बार दूसरा गीत दिए से बदनाम फरिश्ते फिल्म की गीत गए साशा भोसले और ये टू गीत पासोटे अपना कन लगा मैसेजेस खन्ना को लोई दिया हो तो हुनी बो बदनाम फरिश्ते फिल्म की गीत गए से आशा भोसले

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने

विकास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। विकास बोल।